0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff communication station.
1: The following is a paid program. The views and opinions do not represent those of CKJS or its advertisers.
2: एक हर्फ तसल्ली का, एक लफ्ज मोहब्बत का, खुद अपने लिए उसने लिखा तो बहुत रोया। पहले भी शख्सियतों से खाई थी शिकस्त उसने, लेकिन तेरे हाथों से हारा तो बहुत रोया। आसान तो नहीं अपनी हस्ती से गुजर जाना, उतरा जो समंदर में दरिया तो बहुत रोया। जो शख्स न रोया था कभी तपती हुई राहों में, दीवार के साये में बैठा तो बहुत रोया।

0: You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time.
1: कभी गौर किया है, महसूस किया है, इनफैक्ट अल्फाज देने की कोशिश की है बारिश की बूंदों, बिजली और बादलों के उस सीन को। अच्छा बताएं कैसा लगता है खिड़की से बारिश की बूंदें देखना, अपने आप को उन बूंदों की नजर करना, जब बिजली जोर से कड़क कर अपने गुस्से का इजहार करती है और जवाब में बादल हंस कर उसे मनाता है। इन एहसास में जीना कैसा लगता है, बारिश के संग आंख मिचोली खेलना कैसा लगता है।

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਇਹੋ ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
3: अच्छा आपको बताऊं कि रिश्ते बनाने और तोड़ने में आपकी जुबान का बहुत बड़ा हाथ होता है। हमारे घर के पास एक लेडी रहती हैं जो हमेशा कहा करती थी कि जुबान शिरीं मुल्क गिरी। एग्जैक्टली नहीं पता बट शायद इसका मतलब ये है कि अगर जुबान अच्छी हो तो मुल्क तक फतेह किया जा सकता है। यकीनन अगर आपका बिहेवियर एटीट्यूड और बात करते हुए अल्फाज अच्छे होंगे तो जो ऑलरेडी आपके रिश्ते हैं उनके साथ तो जस्टिस होगा ही, नए रिश्ते खुद ब खुद आपके साथ जुड़ते जाएंगे।

छोटी छोटी बात पर हम लोग अक्सर अपसेट हो जाते हैं। यकीनन खुशी का मतलब सिर्फ स्माइल करना और हंसना नहीं है। खुशी दैट्स अ स्टेट ऑफ माइंड जिसे एक्चुअली हम बाहरी दुनिया में तलाशते फिरते हैं और ये इतनी क्लेवर है कि छुप कर बैठी है हमारे मन के एक छोटे से कोने में। ज्यादा पैसा, बड़ा सा घर, लग्जूरियस कार, अ न्यू एंटी डिप्रेसेंट, प्लास्टिक सर्जरी, फ्लैट स्टमक, ऑब्वियसली ऑल दीज टू कैन नॉट गारंटी हैप्पीनेस। फिर कहाँ ढूंढे इसे। चले खुशी की तलाश जारी रखते हुए पहले एंजॉय करते हैं ये अगला ट्रैक कल्चर ऑफ पंजाब में प्रीत के साथ।

चाहे मैं मोहब्बत हूँ पर मेरा कोई एक रूप तो नहीं, फिर कैसे पहचानोगे मुझे? मैं बताऊँ, हथेली सामने रखना कि सब आंसू गिरे उसमें, जो रुक जाए होंठों पर समझ जाना कि वो हूँ मैं। कभी जो चांद को देखो तो तुम यूँ मुस्कुरा देना, जो चल जाए हवा ठंडी तो आंखें बंद कर लेना, जो झोंका तेज हो सबसे समझ जाना कि वो हूँ मैं, जो ज्यादा याद आऊं मैं तो तुम रो देना जी भर के, अगर हिचकी कोई आए समझ जाना कि वो हूँ मैं, अगर तुम भूलना चाहो मुझे भुला भी देना, मगर जब सांस तुम लेना तो समझ जाना कि वो हूँ मैं।